0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त चित्र?
1: के विचार? को फुलीवाली? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त मेरो फुलीवाली।

Bakribas FM समय सूचक यो Bakribas FM को समय हो अहिले दिउँसो 3 बज्यो

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: お前ね、
1: おじおじおじ
0: おじ、出たわけやね。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、
2: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
0: देख देख देख, अरे अरे ये बाप रे बाप, इस स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो। तो जारी भी क्या लिखवा ले बुका? अरे अरे ए ए,
2: आ जिगर पलट।